0: साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा शुरू होगी। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। कल कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया कानून देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, उससे जुड़ी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मछुआरों की आजीविका में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क तथा उच्च स्तर की तैयारी में हैं। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसके कारण भद्रक जिला सबसे अधिक प्रभावित है। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। उधर असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। शिवसागर जिले में ही कल 7 और लोगों की मौत हुई। ऊपरी असम के जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की है।

वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि विश्व के 75% बाघ भारत में हैं। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर

हरी भरी धरती सुंदर रंगा प्रकृति का अनुपम घर है काजीरंगा। गेंडे हाथी हिरण निराले जंगल गाय मधुर उजाले ब्रह्मपुत्र का निर्मल पानी जीवन की सुनाए कहानी तस्वीर है आज उसी की हमारी जुबानी।

0: चले।
1: तो हम आपको आज लेके चलेंगे काजीरंगा, जिसके नाम का अर्थ होता है स्थानीय कार्बी भाषा में, काजी का मतलब है बकरी या हिरण और रंगाई मतलब लाल, यानी कि लाल हिरणों की भूमि। असम के लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को केवल एक जंगल या नेशनल पार्क नहीं बल्कि असम की आत्मा और राज्य का सबसे बड़ा गौरव मानते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक विश्व धरोहर स्थल है, भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। काजीरंगा का भूभाग घने जंगलों, ऊंची ऊंची हाथी घास, ऊबड़ खाबड़ सरकंडों, दलदलों और उथले तालाबों से भरा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान है ये, जो 1974 में अनाउंस हुआ था, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी इसकी तस्वीर तस्वीर में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। अगर आप जा चुके हैं तो फिर से याद कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि अगला टूर काजीरंगा का बने।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का जो घूमने के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है वो है नवंबर से अप्रैल तक का, क्योंकि मई से अक्टूबर तक मानसूनी बाढ़ की वजह से ये पार्क बंद रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जोरहाट 95 किलोमीटर, गुवाहाटी लगभग 217 किलोमीटर। सफारी जोन में आप जाएंगे तो कोहोर यानी कि सेंट्रल जोन है, बागोर यानी कि वेस्टर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है और बुरा पहाड़। बागोरी जोन एक सींग वाले गेंडों को देखने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। सफारी दीजिए, हाथी की सफारी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी और काजीरंगा ऑर्किड पार्क और यहाँ की जो कार्बी कल्चर है उसे जरूर देखिएगा, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा काजीरंगा और उसके आसपास शांत नदियाँ हैं, झरने हैं, हरे भरे चाय के बागान हैं, कुल मिला के एक ऐसा मनोरम दृश्य जिसे आप अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हम सबका स्वागत कर रहा है।

तस्वीर है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। यहाँ का मुख्य आकर्षण जीप और हाथी की सफारी के साथ साथ यहाँ पे जो पेड़ है ना, वो पूरा का जो पूरा फैलाव है उसमें घूमना बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक सींग वाले गैंडे के रूप में ये पार्क बहुत प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर उसकी प्राचीन वंश और प्रागैतिहासिक रूप की वजह से जुरासिक युग का जानवर भी कहते हैं। ये उद्यान भारतीय जंगली जल भैंस, शाही बंगाल बाघ, एशियाई हाथी और दलदली हिरण का भी घर है, जिन्हें सामूहिक रूप से काजीरंगा के बिग फाइव के रूप में जाना जाता है। साथ ही 450 से ज्यादा प्रजातियां ऐसी हैं जो पंछियों की आपको मिल जाएंगी। भूर पहाड़ पर्वतमाला पहाड़ी भूभाग है, ब्रह्मपुत्र नदी और उसके बेसिन का अद्भुत नजारा है। ये जो पूरा का पूरा दृश्य है ना, हाथियों को उनकी प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर प्रदान करती है। ये सब कुछ आपको नजर आएगा जब आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जाएंगे। और इसके अलावा और भी कुछ है, बहुत सारी चीजें जो हम आपको बताएंगे तस्वीर में।

सच है, क्योंकि जब हम कुछ इस तरह की जगहों में जाते हैं ना, जहाँ पे हमारे आसपास नदी हो, पर्वत हो, चारों तरफ हरियाली हो, तो यूं ही लगता है कि जो भी चीज़ है उसको यूं ही रहने दो, बस आराम से उस पल को देखते रहो। तो फिर हरी घास का एक बहुत बड़ा आंगन है काजीरंगा, जहाँ आपको लगेगा कि नेचर ना गा रही है। गैंडा बड़ी शान से चलता है और जंगल अपनी कहानी कहता है। पंछी भी मीठे तराने गाते हैं, नदियां प्रेम फसाने सुनाती हैं। काजीरंगा का हर रंग आपको अच्छा लगेगा। तो फिर काजीरंगा जाने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, और वो ये कि मजबूत जूते पहने, जो कि भारी बारिश के दौरान आपको बचा के रखेंगे, और जो रास्ता है वो थोड़ा सा फिसलन भरा हो सकता है तो उसमें भी अच्छा रहेगा। फोटोग्राफी के लिए और भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी या देर दोपहर का समय सबसे अच्छा होता है। तो आप जाइए काको चांग या फिर कैफो लांगशो, वाटरफॉल है, हरे भरे चाय बागानों और रबड़ के पेड़ों के बीच में बहुत सुंदर ये वाटरफॉल है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और घने जंगल, पथरीले रास्ते, इन सब से होकर के जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है, और ये आपको चैलेंज करता है वो रास्ता कि भाई आइए तो सही। हल्के फुल्के हाइकिंग एडवेंचर की तलाश है तो फिर ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। रास्ते में जगह जगह हरे पहाड़ों और चाय के बागानों

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न

0: रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

ये तस्वीर है काजीरंगा की। काजीरंगा अनमोल खजाना है, भारत का सुंदर ठिकाना है। पेड़, नदी, नीला गगन और वहां की खामोशी, स्पेशली रात की, बस आप यही गुनगुनाएं।

0: सोच के देखिए कि पूरा चांद हो और जंगल कितना अच्छा लगेगा, है ना। काजीरंगा और काजीरंगा के आसपास फैले जो विशाल बहुत बड़े चाय की बागान है वो पूरा का पूरा नज़ारा, भाई वाह। और इसके अलावा आसाम के जो चाय का जो पूरी प्रोसेसिंग है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे तोड़ी जाती है, फिर सुखाई जाती है और उसके बाद आपको टेस्ट करने के लिए भी मिलेगा, बिल्कुल। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय ऑर्किड पार्क है जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको 500 से ज़्यादा वैरायटी के ऑर्किड मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे पौधे, जड़ी बूटियाँ, ये सब कुछ आपको एक म्यूज़ियम है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और विज्ञान के जो बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं और फोटोग्राफर और आसाम की परिस्थिति, वहाँ का कल्चर, उनकी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है चीज़ों को इकट्ठा करना, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे उनके बारे में लिखना हो, चाहे वो वहाँ का सांस्कृतिक रंग ही क्यों ना हो। बोडो, मिशिंग, कार्बी, दिमासा और तिवा जैसी असमिया जनजातियों की समृद्ध परंपराओं को लिखना, और उसके बाद जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि घूमना हमें बहुत रिच बनाता है। हमारे पास इतनी सारी कहानियाँ होती हैं ना कि महफिल में बैठे कहानियाँ सुनाई और उसके बाद फिर छा गए। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है तस्वीर। तस्वीर है आज काजीरंगा की, और काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा उसके आसपास भी बहुत कुछ है जिसको आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा।
1: सब लोग देखेंगे तो देखेंगे तो

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे, रुम झुम रुम झुम।

जब आप काजीरंगा के जंगलों में जाएंगे ना तो फिर कुछ ऐसा ही गुनगुनाएंगे। और हाँ, वहाँ पे जाके वहाँ पे असमिया थाली खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। मासूर तेंगा है, आलू पीटिका है, उबले हुए आलू को सरसों के तेल में कच्चे प्याज और हरी मिर्च के साथ मैश करके बनाई जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट डिश है ये। फिर खार है, केले के पेड़ की राख से छना हुआ पानी और ख़ासतौर पर खासोत सामग्री से ये तैयार किया जाता है, पारंपरिक व्यंजन है। बांस के कोपलों का खाना और उसके बाद पीठा, उसको तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही मीठा, प्यारा और सब कुछ अच्छा लगेगा। तो पंछियों की हल्की गुनगुनाहट, झाड़ियों में छिपी गिलहरियों की जो चहचहाट और आपके ख्याल, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे काजीरंगा में। ये तस्वीर आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।

तो फिर ये तस्वीर आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब बजने वाले हैं 12, समय है ये समाचारों का। मैं तो चली घूमने, आपकी यात्रा शुभ हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिड़ला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर

0: इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both the Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. Lok Sabha Speaker Om Birla alleged that some opposition members are deliberately disrupting the question hour, which is not appropriate. He added that obstructing the proceedings of the House in a planned manner is not in accordance with parliamentary traditions. The Rajya Sabha was also adjourned till 12 noon over these same

0: การเงิน
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेणु। तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं।

दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आज है आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो सबसे पहले आप सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जीवन को दिशा देने वाला आज का ये दिन वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और बौद्ध धर्म के अनुसार आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और योग परंपरा के अनुसार इसी दिन शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देकर अपने गुरु का पद संभाला था। ये दिन ये त्यौहार उन गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी है, जिन्होंने हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। हमारी संस्कृति और परंपरा में जीवन में ज्ञान, अनुशासन और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसीलिए तो हमारे प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण की गुरु गीता में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु गुरुवे नमः।

जी हाँ, हमारे गुरु भी हमारे माता पिता के समान होते हैं और हमारे माता पिता भी गुरु तुल्य होते हैं, आदरणीय होते हैं, क्योंकि जीवन की शुरुआत हम इन्हीं के साथ, इन्हीं के सानिध्य में करते हैं। तो सही गलत का फैसला हमारा करना यही हमें सिखाते हैं। और तो ये गीत आपने सुना, फिल्म थी मैं चुप रहूंगी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इसी के साथ जो हम अपने कार्यक्रम में दिन विशेष की बात करते हैं, तो दिन विशेष में आज बता दें कि आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जो माँ दुर्गा का वाहन है और शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक भी है और है हमारा राष्ट्रीय पशु। आज के दिन को मनाने का उद्देश्य बाघ संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और बाघों के प्राकृतिक आवास का प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि बाघों का और हमारा साथ लंबे समय तक यूं ही बना रहे, जिससे हमारी भावी पीढ़ियां जंगल की इस शानदार प्रजाति को देख सकें। और जब बात ये हो, दिन विशेष की हो ही रही है, तो आजकल भाई सबसे ज़रूरी बात जो राष्ट्रमंडल खेलों की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आजकल स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है और इसमें अब बड़ी खुशी की बात है कि बहुत शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। तो बारिश के मौसम में पदकों की बारिश भी लगातार जारी है और कुल पदकों की संख्या अब हमारी 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हैं। 40 वर्ष की शर्मिला धनखड़ जो हैं, 2 बेटियों की माँ भी हैं, उन्होंने ये सफलता विपरीत पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के बाद अर्जित की है और इन्होंने गोल्ड मेडल दरअसल इन्होंने अर्जित किया है और ये पैरा एथलेटिक्स इवेंट के सीजन का सर्वश्रेष्ठ थो करके ये मेडल इन्होंने जीता है। और इसी तरह से ज्ञानेश्वरी यादव हैं, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलाया है, और बिंदिया रानी देवी हैं, शिल्पा शायला भी हैं, जिन्होंने अपने इवेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही आज एक हरजिंदर कौर जो हैं वो एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई हैं, वेट लिफ्टिंग में रजत पदक इन्होंने जीता है। तो हमारे कार्यक्रम की ओर से हम इन सभी एथलीट्स को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, इसी तरह खेलते रहिए और देश का मान बढ़ाते रहिए। और अब समय है, जैसा कि आप लोगों को इंतजार होगा, अब समय है आज का सवाल पूछने का। तो आपको बताना है कि हिंदी अंग्रेजी के अलावा आप अपने घर में किस भाषा में बात करते हैं, यानी आपकी मातृभाषा क्या है। तो अपने जवाब हमें लिख के भेजिए, वही हमारा एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके उत्तर का इंतजार।

अपना देश इल्फ्स फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और दुनिया में कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें दुनिया उनके जाने के बाद भी याद करती है, सम्मान देती है, उनके कार्यों से प्रेरित होती है। ऐसे ही दो महान विभूतियों को आज हम याद कर रहे हैं जिन्हें भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनमें से एक हैं अरुणा आसफ अली, निर्भीक निडर स्वतंत्रता सेनानी और भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, जिन्हें ओल्ड ग्रैंड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान पर तिरंगा फहराने जैसे साहसपूर्ण कार्य के लिए उन्हें हमेशा याद करता किया जाता रहेगा। और इसी तरह से जब देश की प्रगति और उन्नति की बात होगी तो उसमें JRD टाटा की अग्रणी भूमिका की बात भी जरूर होगी। जमशेद रतनजी दादा भाई टाटा यानी JRD टाटा की आज जन्म जयंती है। वे देश के पहले लाइसेंसी पायलट थे और साथ ही देश की पहली कमर्शियल एयरलाइंस की नींव रखने वाले भी। वे पहले उद्योगपति थे, इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान, अन्य उद्योगों के माध्यम से उन्होंने देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा उच्च नैतिक मानकों का पालन किया जिसमें ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता भी थी। तो आज हम सब अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं और उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो इसी के साथ मैं अपना सवाल फिर से आप लोगों को दोहरा देती हूँ कि आज का हमारा सवाल ये है कि आपको बताना है कि आप अपने घर में हिंदी अंग्रेजी के अलावा कौन सी और भाषा

में बात करते हैं, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, कुछ भी, जो भी आप अपने घर में अपने लोगों से बात करने में बोलते हैं उस भाषा के बारे में हमें बता दीजिए। तो हमारा मेल आईडी तो आपको पता ही है, fmgoldga@gmail.com। तो हमें है इंतज़ार आपके जवाबों का।

वंदना फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, जो सवाल हमने आपसे पूछा था, आपके मेल्स भी आने शुरू हो गए हैं, तो हम तक ये जो मेल एक पहुंचा है, गौरी शंकर नागलोई जी हैं, ये लिखते हैं कि राम राम। तो राम राम गौरी शंकर जी आपको भी। और ये कह रहे हैं कि 50 मील के बाद भाषा जो है वो बदल जाती है, थोड़ा बहुत जो शुद्ध हिंदी घर में नहीं कोई बोलता, वो जो है वो भाषा इतनी बदल जाती है कि आधी हिंदी आधी देसी भाषा हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए ना, वो कहते हैं ना, हमारी देश में कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये लोकोक्ति जो है बिल्कुल चरितार्थ है कि थोड़े थोड़े दूर पे भाषा जो है हमारी बदल जाती है, बोलियां बदल जाती हैं। और लेकिन यही तो खूबसूरती है, हमारे देश की विविधता है इसी में। और इसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है, ये है महेश अग्रवाल जी हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो है घर में तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन हम लोग जो है अपने घर में अपनी ही भाषा में बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपने लोगों से जब अपने में और हरियाणवी में बात करते हैं तो ठीक है। महेश अग्रवाल जी, बहादुरगढ़ से आप लिख रहे हैं, हरियाणा से, तो बिल्कुल हरियाणवी आपकी मातृभाषा है और आप अपने लोगों से अपने घर में हरियाणवी में बात करते हैं, तो ये बहुत ही अपनापन आपको महसूस होता होगा। सभी को महसूस होता है जब लोग अपने घर में अपने लोगों से जब तक अपनी भाषा में बात ना कर लें तो वो अपनत्व नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। और भाषा तो हमारी जो है वो कहा जाए कि शुरुआत में जिस भाषा में हम सीखते हैं, बच्चा सीखता है, वो उससे उसकी कल्पनाएं और उसकी आत्मविश्वास इसीलिए बढ़ता है क्योंकि उस भाषा को वो अच्छी तरह जान जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जैसे कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो ही को सूल भी उसी से मिटता है, मतलब यानी हमें सुकून भी देता है और इसी यहीं पर हमारी उन्नति का मार्ग भी है। और इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करना चाहूँगी खुर्जा की। तो खुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में प्राचीन और सुंदर सिरेमिक यानी चिकनी मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया में से इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए इसे सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ बनते हैं मिट्टी के कलश, त्योहारों के दिए, रोजमर्रा के खाने पीने के बर्तन, सजावटी वस्तुएं, फूलदान, जार, सो पीस और देवी देवताओं की मूर्तियां और भी कई सारे ढेरों सामान यहाँ पे बनते हैं जो किसी भी घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। और खुर्जा की ये कला लगभग 600 साल पुरानी है। दिल्ली के पास बसे प्रवासी कुम्हारों ने फारसी और मध्य एशियाई तकनीक को भारतीय डिजाइन के साथ मिलाकर इस कला को विकसित किया था। इन चीजों में हाथ से की गई जो नक्काशी होती है, फूल पत्तियां और लताएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखते ही बनती हैं। और परंपरागत रूप से ये हल्के सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर नीले या भूरे रंग से बनाए जाते हैं। इनमें उपयोग होने वाला रंग ग्लेज लेड फ्री फूड ग्रेड होते हैं जिससे कि माइक्रोवेव और सेहत के लिए सुरक्षित होते हैं। ये बर्तन चमकदार होने के साथ साथ काफी मजबूत भी होते हैं क्योंकि ये बर्तन हाथ से तैयार किए जाते हैं। तो भाई, अगर ये उम्मीद करें आप कि एक जैसे दो बर्तन मिल जाएंगे तो ये नहीं होता, एक जैसे दो बर्तन नहीं मिलते। और अगर आप इन चीजों के शौकीन हैं तो एक बार दिल्ली से मात्र 85 किलोमीटर दूर इस छोटे से शहर में एक बार जरूर जाइए। और सिरेमिक पॉटरी के साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर मिलती है 115 साल पुरानी मशहूर मिठाई खुरचन, तो इसे भी लेना जरूर, मतलब जरूर लेना चाहिए आपको। और ये मिठाई ना दूध को धीमी आंच में उबालकर मलाई की परतें जमाकर बनाई जाती है, तो इस मिठाई का स्वाद भी वहाँ पर जा करके आप जरूर लीजिएगा।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म आवाज़ थी लता मंगेशकर और रफ़ी की। और इसी के साथ देखिए आपके मेल्स हमारे पास आते जा रहे हैं, और ये मेल है हमारे पास जो सुदर्शन मुखी का। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लिख रहे हैं शांति नगर सोनीपत से। तो आप लिख रहे हैं कि मैं अपने घर में हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा पंजाबी और हरियाणवी में बात हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है सुदर्शन जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पंजाबी में, यानी ये अभी आपकी मातृभाषा होगी और इसे आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें बात करते हैं। तो देखिए पंजाबी से याद आया मुझे, तो पंजाबी में बहुत मशहूर लेखिका थी अमृता प्रीतम जी, उनकी कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। कृष्णा सोपती जी हैं, वो लिखती थी। तो उनकी एक कविता की एक लाइन मुझे याद है, मैं तेनू फिर मिलांगी कब किथे पता नहीं। तो बहुत अच्छी मीठी लैंग्वेज है ये भी। और उसके बाद आप लिख रहे हैं ये हैं अग्रसेन यादव जी। तो अग्रसेन यादव जी भी लिख रहे हैं कि इन्हें भी अपने घर में और हम लोग आपस में सब अवधि में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। और देखिए अवधि और भोजपुरी का नाम आपने लिया, तो देखिए ना भाषा हमें अपने क्षेत्र का की पहचान अपने आप हमसे करा देती है, क्योंकि अवधि और भोजपुरी आपने बताया तो अपने आप जो है इंसान सोच लेता है कि आप अवध क्षेत्र से संबंध रखते होंगे। जैसे कि अवधि बोली जाती है लखनऊ में, अयोध्या में, और भोजपुरी का भी वो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वही उसका क्षेत्र है, तो आप जरूर वहां से संबंध रखते हैं। और भाषा ना अपने साथ संस्कृति को समेटती है, क्षेत्र को समेटती है, तो भाषा को जिंदा रखना यही बहुत जरूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो तभी आगे पहुंच पाएगी जबकि अपने घर में हम उसे अपने लोगों में बोलते रहेंगे, और इससे हमारे बच्चे भी वही चीजें सीखेंगे और इस तरह से

जो है वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ ही अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उड़ान यात्री कैफे की, यानी कि उड़ान यात्री कैफे जो कि आप सुन रहे होंगे कि क्या है ये, तो ये है कैफे जो एयरपोर्ट पर मिलते हैं, मिलने वाले महंगे खाने पीने के सामान से आम आदमियों को राहत दिलाने के लिए, हवाई यात्रा को बजट अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई एक ऐसी सरकारी पहल है जो कि भारतीय हवाई अड्डों पर आम यात्रियों को बेहद कम और किफायती दर पे ये साफ सुथरा और भोजन पे जो है वो पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है। यहाँ खाने पीने की चीजों को फिक्स और कम दाम इसके रखे गए हैं, जैसे कि 10 रुपए की चाय, 10 रुपए की पानी की बोतल, 10 रुपए की कॉफी, 20 रुपए का समोसा, तो ये सब चीजें यहाँ पे मिलती हैं। कम दाम होते तो हैं इसके, लेकिन इसके बावजूद यहाँ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिलहाल ये सुविधा कोलकाता, चेन्नई, पुणे, भुवनेश्वर, लखनऊ और अहमदाबाद जैसी चुनिंदा हवाई अड्डों के टर्मिनल क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराई गई है। तो ये सुविधा कम बजट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तो भाई बहुत लाभप्रद है ही। तो अगली बार जब आप हवाई यात्रा पर जाएं तो उड़ान यात्री कैफे की इस सुविधा का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ये सुविधा है आप ही के लिए।

जी, कदम के निशान बना के चले। और ये गीत अभी आपने सुना ज्वेल थीफ से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और इसी के साथ आपके मेल्स आते जा रहे हैं हमारे पास, और अभी जो मेल हमें प्राप्त हुआ है वो है कमाईनी जी का, मोती लक्ष्मी नगर से। तो ये लिख रही हैं कि इनका गांव उत्तर प्रदेश में है, वैसे जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ अवधी भाषा में बात करते हैं, और जब वहाँ से लोग आते हैं तो उनसे भी अवधी में बात करते हैं। अपनी मातृभूमि में बात करना एक अलग सी खुशी देता है। बिल्कुल सही कहा आपने कमाईनी जी, बहुत ही खुशी होती है। और जब लोग एकदम से कहीं, आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां पे उस क्षेत्र में कोई आपको जानने वाला ना हो, लेकिन एकदम से जब अपनी भाषा वहां सुनाई देती है ना, तो कुछ अपनेपन का एहसास अब बाहर हो जाता है। तो घर में आप बात करती हैं, बहुत अच्छी बात है। यही हमारी चीज़ें जो है वो अगली पीढ़ी तक कन्वे होंगी और वो सीखेंगे भाषा को। और इसके साथ ही इदरीस सैफी जी कह रहे हैं कि खुर्जा रास्ते में पड़ता है, लेकिन इन्होंने ने ये नहीं लिखा है कि किस भाषा में ये बात करते हैं। भाई इदरीस जी, आपने लिखा खुर्जा रास्ते में पड़ता, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप खुर्जा जाते रहते हैं और बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें आप वहाँ से लाए होंगे, लेकिन अपने कौन सी भाषा में बात करते हैं ये भी लिख दीजिए। और इसके साथ ही नवीन भाटिया मोतीनगर से लिख रहे हैं कि ये घर में सिंधी बोलते हैं। तो भाई बहुत ही खूबसूरत भाषा है ये सिंधी, और आप बोलते हैं ये बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए अपने घर में, लोगों से इसी में बात करनी चाहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम में अगली बात मैं करना चाहूंगी कि स्वास्थ्य की बात, क्योंकि बरसात का मौसम देखिए चल रहा है, और आजकल बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा बना रहता है। तो डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होने वाला वायरल बुखार है, जिसमें कि तेज बुखार, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में असहनीय दर्द, आंखों में दर्द, शरीर या चेहरे पर लाल रंग के दाने या चकत्ते उभरना, थकान और भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर स्थिति में पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टियां आना, नाक या मसूड़ों से खून बहना और प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण आप में भी या आपके परिजनों में दिखाई देता है तो इसे साधारण बुखार नहीं समझना चाहिए, बल्कि बिना देर किए आप डॉक्टर से संपर्क करें। और ये बिल्कुल ना करें कि थोड़ी राहत पाने के लिए आप कोई दर्द निवारक दवा लें और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें, क्योंकि इसका असर तो इस डेंगू के बुखार में होता नहीं है। और डेंगू से बचा जा सके इसके लिए भी सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी हैं। और ये सावधानियां हैं जैसे कि आप पानी कहीं जमा ना होने दीजिए, क्योंकि देखिए ना, याद रखिए कि डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपता है। कूलर, गमले, बाल्टी या छत पर पुराने टायर आदि में पानी इकट्ठा ना होने दें। जितना संभव हो शरीर को ढक कर रखें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करें। घर के आसपास कीटनाशकों का छिड़काव करें और पानी की टंकियों को हमेशा ढक कर रखें।

जी हाँ, ये गीत तभी आपने सुना, झुक गया आसमान से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इसी के साथ ही अब हमारे कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है, तो भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने श्रोताओं से, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा मेल नहीं ले पा रही हूँ, तो फिर कभी आपका मेल जरूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी रेणु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: 방근.
1: 아스티트와 아프게 벽티트와 세주라. 아프가 갈 앙근.

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीरवन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉ शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बहाली और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Lok Sabha has

और कलाकार बेमिसाल में आज जिस बेमिसाल कलाकार की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि आपके भाग्य में जो लिखा है ना वो 100 पर्दों को चीर कर भी आप तक पहुंच जाएगा। तो बात इन दोनों की है जब अभिनेता बलराज साहनी गुरुदत्त निर्देशक फिल्म बाजी की पटकथा पर काम कर रहे थे और किसी कारणवश उन्हें उस दिन यातायात का कोई और साधन नहीं मिला तो वो बेस्ट परिवहन की बस में चढ़ गए जिसमें बस के संचालक बदरुद्दीन काजी टिकट बांटने के साथ साथ यात्रियों का मनोरंजन भी कर रहे थे। कौन थे ये बदरुद्दीन काजी बताऊंगी आपको इस गाने के बाद। गीत हमने लिया है फिल्म एक फूल चार कांटे से। हसरत जयपुरी साहब के बोल हैं, शंकर जयकिशन जी का संगीत और आवाज मोहम्मद रफी की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:11 और ठीक 1 सेकंड कलाकार बेमिसाल लेकर हाजिर है देविका।

0: क्यों ना दे मर जाए राहों में दिल वाले तिरछी नजर से क्यों ना देख तिरछी नजर से यूं ना दे।
1: जी हाँ, फिल्म एक फूल चार कांटे से गीत आपने सुना और मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ गई, आपकी भी यकीनन आ गई होगी। फिलहाल अभिनेता बलराज सानी बस संचालक बदरुद्दीन काजी के टैलेंट से इतना प्रभावित हुए कि अगले ही दिन उन्होंने बदरुद्दीन को नवकेतन के दफ्तर बुला लिया, जहां फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त, निर्माता देवानंद और बाकी नवकेतन के सदस्य मौजूद थे। और ये था बदरुद्दीन काजी साहब का जीवंत ऑडिशन और गुरुदत्त द्वारा बदरुद्दीन काजी को जॉनी वॉकर का नाम दिया गया।

भाई, इस गीत को कोई कैसे भूल सकता है। मिस्टर एंड मिसेस 55 का गीत आपने सुना, ओपी नैयर साहब का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल और गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज़। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य

0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। बद्रुद्दीन जमालुद्दीन और काजी यानी बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी यानी कि हमारे जॉनी वॉकर साहब का जन्म 23 मार्च 1924 को इंदौर में हुआ था और वो रोजी रोटी की तलाश में 1940 में तब के बॉम्बे आ गए और बलराज सहनी साहब के साथ हुए किस्से के साथ आपका फिल्मों में आगमन हुआ। और अपने इस लंबे फिल्मी सफर में जॉनी वॉकर साहब ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।

राशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गीत आपने सुना। फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी, ओपन एयर का संगीत और अनजान साहब की बोल। श्रोताओं, अधिकतर फिल्मों में जॉनी वॉकर साहब कॉमिक रोल में ही नजर आए, इसलिए उन पर फिल्माए गए गीत भी कॉमिकल खुशबू लिए रहते थे। जैसे कि ये अगला गीत जो अब आप सुनेंगे, इस नगमे को रफ़ी साहब ने गाया है और फिल्म थी नाइट इन लंदन। और इस जो गीत है उसको लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, और इस गीत को सुनिए और खिलखिलाइए।

0: जी हाँ, ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है ना, इस मुस्कुराहट की जो वजह है वो है मोहम्मद रफ़ी साहब और जॉनी वॉकर साहब। फिलहाल आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

1:34 और ठीक 34 सेकेंड, कलाकार बेमिसाल आपके साथ है देविका, और बात हो रही है बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी साहब की, यानी कि जॉनी वॉकर साहब की। गुरुदत्त साहब ने नवकेतन में साक्षात्कार के बाद जॉनी वॉकर उनकी हर फिल्म में नजर आए। कौन भूल सकता है वो गीत जिसे आज भी लोग गुनगुनाते हैं, बात अगर चंपी की हो या तेल मालिश की, ये गीत भरबस याद आ जाता है। फिल्म थी 1957 की प्यासा, गीत लिखा साहिल लुधियानवी साहब ने, एसटी बर्मन के संगीत निर्देशन में, और आवाज मोहम्मद रफी की।

जॉनी वॉकर साहब ने अपने फिल्मी सफर में पर्दे पर लगभग 121 गीत गाए हैं श्रोताओं, और सबसे रोचक बात क्या है जानते हैं, इनमें से 100 के लगभग गीत मोहम्मद रफी साहब के गाए हुए हैं। सच पूछो तो जॉनी वॉकर और मोहम्मद रफी साहब की ये जोड़ी कमाल की थी। सुना रहे हैं आपको एक डुएट फिल्म CID से, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल, ओपी नैयर का संगीत और आवाज गीता दत्त और मोहम्मद रफी की।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 29 तारीख वह दिन है बुधवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगे सुमो, मनपा मदघोषक श्री सांगे टाशी, तकनीकी अभियंता शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा, अच्युत बर्मन और हेमंता स्वर्गियारी और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी छोटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: the region are high. India's trade and energy supply chains are strongly linked to this region. With bilateral annual trade of around $180 billion, accumulative foreign direct investment of over $31 billion, and remittances of more than $52 billion from GCC alone, these
1: At least 40 people were killed and dozens injured in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, over the last 2 days during a brutal crackdown by Pakistani forces amid escalating unrest in the region. Citing reports, the United Kashmir People's National Party on Wednesday alleged that around 40 civilians were killed while several others were injured and arbitrarily arrested between 27th and 28th of July in Rawalkot, Mirpur and other areas of the occupied territory. International Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats and address the declining numbers of wild tigers. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings saying India is home to 70% of the global tiger population. He noted that India's tiger conservation efforts are inspired by the nation's centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
3: इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन कंजर्वेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप द टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2226 टू ओवर 3600 टाइगर रिजर्व्स हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम 47 टू 58 एंड एलिफेंट रिजर्व्स हैव आल्सो गॉन अप फ्रॉम 28 टू 32 अंडरस्कोरिंग द कंट्रीज ग्रोइंग कमिटमेंट टू वाटर कंजर्वेशन डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैव आल्सो ग्रोन फ्रॉम 26 टू 100
2: डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई.
1: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा. सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है. गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी. भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की. कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए. पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई. और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में. अब समाचार विस्तार से. लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई. ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है. विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं. इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है. मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन

0: प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, खाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: यूपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और

0: भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
1: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
2: हाँ।
1: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
2: हाँ।
1: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनःस्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
5: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
6: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को

0: प्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी, वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी, वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी, जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे नरेंद्र चंचल की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे भूपेन हजरे का क्या वास्तव में चंद असमिया फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भूपेन हजरेका की आवाज में चंद असमिया फिल्मी गीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग की 11वीं कक्षा की छात्रा श्रृंग छोटन से एकल उपयोग प्लास्टिक एक गंभीर समस्या विषय पर चंद शब्द।
1: ताशित लेख आकाशवाणी तवंग के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतेंग के 11वीं कक्षा की छात्रा मैं श्रृंग छोटन और मैं आकाशवाणी तवंग को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कार्यक्रम मेरी बात के तहत अपना विचार साझा करने का सुनहरा अवसर दिया। तो मैं आज एकल उपयोग प्लास्टिक एक गंभीर समस्या विषय पर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि एकल उपयोग प्लास्टिक क्या होता है। यह वह प्लास्टिक है जिसका हम केवल एक बार उपयोग करते हैं और फिर फेंक देते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, पानी की छोटी बोतलें, प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, स्ट्रॉ और खाने की पैकिंग। आज प्लास्टिक का उपयोग हमारे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यह सस्ता और सुविधाजनक तो है, लेकिन इसके नुकसान बहुत बड़े हैं। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होता, यह वर्षों तक मिट्टी, नदियों और जंगलों में पड़ा रहता है। इससे भूमि की उर्वरता कम होती है, जल स्रोत प्रदूषित होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। सबसे अधिक नुकसान हमारे पशु पक्षियों और जल जीवों को होता है। कई बार गाय, कुत्ते और अन्य जानवर भोजन की तलाश में प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी तरह जानवर, पर्यावरण और हम मनुष्य

0: सभी को यह प्रभावित करता है, इसीलिए यह सबकी समस्या है। प्रिय साथियों, इस समस्या का समाधान हमारे अपने हाथों में है। यदि हम छोटे छोटे अच्छी आदतें बनाएं तो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें बाजार जाते समय कपड़ा या जूट का थैला साथ ले जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सील या तांबे की बोतलों का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के कप, प्लेट और चम्मच की जगह सील, कांच या अन्य पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की बोतलें और थैलियाँ इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और दूसरों को भी ऐसे करने से रोकना चाहिए। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने परिवार, मित्रों और पड़ोस के लोगों को एकल उपयोग प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बता सकते हैं। यदि हम विद्यार्थी एक छोटा सा प्रयास करें तो पूरा समाज बदल सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि धरती हमारी है, इसकी सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आइए आज हम सभी संकल्प ले कि जहाँ तक संभव होगा हम एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना एकल उपयोग प्लास्टिक एक गंभीर समस्या विषय पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतियांग की 11वीं कक्षा की छात्रा श्रृंग छुटन से चंद शब्द। इसी के साथ आज का कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म महाराज से मोनाली ठाकुर की आवाज में। शब्द रचना है कौसर मुनीर की व संगीत है सोहेल सेन का।

अभी आपने सुना फिल्म नीरजा से कविता सेठ की आवाज में ये गीत, गीतकार थे प्रसून जोशी व संगीता विशाल खुराना का। आप सुने कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म सिमरन से गुरु रंधावा और जोनिता गांधी की आवाज में। शब्द रचना है वायु की व संगीत है सचिन जिगर का।

अभी आपने सुना फिल्म केदारनाथ से गीत देव नेगी की आवाज में गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य व संगीत था अमित त्रिवेदी का। इस गीत के साथ आज का कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम इस संदेश के बाद।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म शिवाय से। शब्द रचना है सईद कादरी के व संगीत है मिथुन का।

अभी आपने सुना फिल्म तुम मिले से गीत, नीरज श्रीधर की आवाज में गीत करते कुमार, व संगीत था प्रीतम का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे मोहित चौहान की आवाज में फिल्म जब वी मेट से। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना फिल्म वांटेड से गीत शान और श्रेय घोषाल की आवाज में गीतकार थे अरुण भैरव व संगीत था साजिद वाजिद का। श्रोताओं आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे प्रसून जोशी द्वारा शब्द फिल्म डेली सिक्स से। मोहित चौहान की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

फिल्म दिल्ली 6 के संगीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे कलाकार रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन। राग है जोध व तबले पर संगत दिया है श्री दुर्गा प्रसाद ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में किया गया है संशोधन। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई जिले के चोखा में नवनिर्मित मिनी फुटबॉल स्टेडियम का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में खेलों को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता। अरुणाचल प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंग तासिंग ने ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण संस्थाओं को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर सुशासन को मजबूत करने पर दिया जोर। ईस्ट सियांग जिला स्थित पासीघाट नगर परिषद अरुणाचल प्रदेश की पहली शहरी स्थानीय निकाय बने। राज्य सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस पोर्टल की शुरुआत। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से होना चाहिए व्यापार बहाल। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 40। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। और ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं के 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में भारत के लिए रजत पदक प्राप्त किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी आपराधिक को क्यों संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े तंत्र को प्रावधान शामिल किया गया है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित नारायण स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने के तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्यायालय दिलाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा है कि न्याय विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। श्री सिंह ने कहा है कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई है।

0: विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति की है।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय के कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके चलते सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई जिले के चौखाम में नवनिर्मित मिनी फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये राज्य सरकार की ओर से स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और जमीन स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने की कोशिशों में एक अहम कदम है। इस परियोजना के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हुआ है, जिसे नामसाई लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने चौखाम की खेलों को बढ़ावा देने और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया है। उन्होंने अलग अलग जिलों के प्रतिभाशाली युवा फुटबॉलर्स को तैयार करने के लिए एक फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर बनाने का विजन भी साझा किया। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को जिला खेल अधिकारियों और खेल एवं युवा मामलों के विभाग के साथ पहले ही साझा किया जा चुका है। इस प्रस्तावित सुविधा का उद्देश्य एनजीओ और दूसरे हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रोफेशनल कोचिंग, रहने की जगह और दूसरी जरूरी मदद मुहैया कराना है। अरुणाचल प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंता सिंह ने ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण संस्थाओं को सशक्त बनाने और जमीन स्तर पर सुशासन को मजबूत करने पर जोर दिया। जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की समग्र ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए ये कार्यक्रम राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने प्रतिभागियों से कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान को गांव तक स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित हो सके। ईस्ट सियांग जिला स्थित पासीघाट नगर परिषद अरुणाचल प्रदेश की पहली शहरी स्थानीय निकाय बन गई है, जिसने राज्य सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का परिषद के चीफ काउंसिलर तागोम पादुंग ने डिप्यूटी चीफ काउंसिलर कामिन लगो, काउंसिलर म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जयंती पर्तन तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शुभारंभ किया। प्रारंभिक चरण में यह पोर्टल केवल ट्रेड लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए समर्पित है। अब पासीघाट नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में नागरिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठान नए ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन, लाइसेंस का नवीनीकरण, आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन जानकारी, ट्रेड आइटम हटाने सहित अन्य संबंधी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से बात की और अपर असम में आई बाढ़ के बारे में राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि जमीन स्थिति का जायजा लिया गया है और आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले।
0: भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए

0: कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
1: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
0: ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में भारत के लिए रजत पदक प्राप्त किया। इसके साथ ही ग्लासगो गेम्स में भारत की कुल पदक संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह और हरजिंदर कौर को बधाई दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्थान के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। यह अपील उन खबरों के बाद आई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कई बार गोलीबारी में की गई 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ब्लोकर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट में मुजफ्फराबाद की ओर से दोबारा शुरू होने की बात हुई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शुभशाची भट्टाचार्जी। द लोकसभा डिस्कशन कंटिन्यूड ऑन द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग। द बिल सीक्स टू अमेंड द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा Rahul Gandhi said the education system in the country has now become very expensive. He alleged the money spent on conducting NEET UG examination is more than the education budget of the country. Mr. Gandhi said that the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi against the Union Home Minister Amit Shah. Mr. Rijiju demanded that Mr. Gandhi should apologize in the House for his remarks. Meanwhile, the Lok Sabha is adjourned till 2:30 p.m. Earlier, JDU MP Dilesher Kamath expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for bringing the bill in Parliament, stating that it will ensure a brighter future for students while enhancing transparency in the education system. Opposing the bill, N.K. Premchandran of RSP said that the bill is inadequate to achieve the purpose stated in the bill. He alleged that the change brought in the proposed bill are merely cosmetic. Minister of State for Personal Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, had moved the bill in the House yesterday. Meanwhile, Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. Responding to the issue, Leader of the House, J.P. Nadda, said it was a routine law and order matter, adding that the police take appropriate action whenever any student engages in activism and takes the law into their own hands. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today alleged that Congress members did not speak on the provisions of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 during the debate and raised unrelated political issues. He said the amendment has been introduced in response to concerns and demands of the students, and asserted that the Prime Minister's decision to bring the bill has strengthened students' confidence in the examination system. Several BJP MPs, including from Jharkhand, today staged a protest at parliament premises over alleged paper leak of the Jharkhand public service.

उदंगोदया सुनोम्बु दोनों ने उदंगोदया

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरोखा में पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर तवंग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार यह सूचित किया जाता है कि मतदाता सूची 2026 के चल रहे विशेष गहन संशोधन के जनगणना चरण के दौरान मतदान अधिकारियों द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार अपात्र श्रेणी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत्यु और डुप्लीकेट सूची के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं की सूची तैयार की गई है और निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई है ताकि आम जनता मतदाता सूचियों और नामों को शामिल न किए जाने के संभावित कारणों तक पहुंच सके। यह कार्यालय हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस तवंग, ऑफिस ऑफ रिस्पेक्टिव इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ऑफिस ऑफ रिस्पेक्टिव एसी सीओ कम मेंबर सेक्रेटरीज, ऑफिस ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और रिस्पेक्टिव बीएलओज। सूचना समाप्त हुआ। श्रोताओं, जरोखा में अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे तवंग मठ के गेलोंग जाम्बा जिनपा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसे संचालित करेंगे दर्जी ड्रामा। 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज। 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में कार्यक्रम कुआं में तराने के अंतर्गत। 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 30 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी

की दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुन सकेंगे मनहर उदास की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3:00 विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे कुमार सानू की आवाज में चंद बांग्ला गीत। दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम महिला मंच। 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म अमर प्रेम की प्रेम कहानी से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत। फिल्म स्त्री 2 से वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर की आवाज में गीत। फिल्म महाराज से मोनाली ठाकुर की आवाज में गीत। फिल्म सूरमा से दिलजीत दोसांझ की आवाज में गीत। फिल्म खेल खेल में से विशाल मिश्रा और जहरा एस खान की आवाज में गीत। फिल्म क्या यही प्यार है से अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में गीत। फिल्म सैयारा से विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाज में गीत। फिल्म दरक 2 से जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाज में गीत। फिल्म वार 2 से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में गीत। और फिल्म बागी 4 से जोश बरार और परंपरा टंडन की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, जिसमें आप सुन सकेंगे कलाकार विजी जोग से वॉयलिन वादन। 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नामथार कल शाम 5:00 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री धुतन टाशी से। 5:35 पर कार्यक्रम तीनयुग समा और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शीदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे तवंग लाकर अमा छोकपा के अमतेंदन चुनजुम और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। कल शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे एलडी स्कॉलर्स होम स्कूल के 5वीं कक्षा के छात्र टशी वेजर से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा लाइफ। कल शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक और अनेक, जिसमें आप सुन सकेंगे आतिफ असलम और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप आनंद ले सकेंगे फिल्म किस्मत कनेक्शन से आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज में गीत। फिल्म लैला मजनू से आतिफ असलम और ज्योतिका टंगरी की आवाज में गीत। फिल्म रमैया वस्तवैया से आतिफ असलम और श्रेय घोषाल की आवाज में गीत। फिल्म एंटरटेनमेंट से आतिफ असलम और शालमली खोलकरी की आवाज में गीत। फिल्म तेरे नाल लव हो गया से आतिफ असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पंचाल की आवाज में गीत। फिल्म सत्यमेव जयते से आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाज में गीत। और फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में गीत। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। 7:50 पर रीजनल न्यूज। 7:55 पर एक देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कल रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 9:00 न्यूज एट 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरोखा यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के 4th संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है।

ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉटपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Union Home Minister inquired about the situation on the ground and assured that the centre will continue to provide all necessary assistance. Indian boxer Sakshi Chaudhary assured herself of at least a bronze medal by entering the 51kg category semi-finals of the Commonwealth Games in Glasgow today. Sakshi defeated Northern Ireland's Caitlin Fryers 5-0 to enter the last four stage. She has become the fifth Indian boxer to be guaranteed of a medal at the ongoing games. With this, India's total medal count at the Glasgow Games has reached 12, including 2 gold, 7 silver and 3 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी और इस कार्यक्रम को आज संचालित कर रहे हैं सिटिम यांगचिन।

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, और इस कार्यक्रम को आज संचालित कर रहे हैं सिटिम यांगचिन।

0: दोस्तों, जिंदगी बहुत हसीन होती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। आकाशवाणी तवंग से प्रसारित कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी सुनने वाले आवाज की दुनिया के तमाम दोस्तों को सिटी म्याचिन का नमस्कार। दोस्तों, हमारे आज के हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने के लिए मेरे साथ तकनीकी सहयोगी है हेमंता सरगरी, न्यूटन बोरा, अश्युत बर्मन और शिखा देगा। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सुनते हैं हमें ये पहला फोन किस श्रोता ने और कहां से किया है। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो,
0: टेस्टलेला
1: Let's
0: Let's

0: हेलो, नमस्कार
1: हेलो आकाशवाणी। नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: मैं अमल बात कर रहा हूँ रंगापारा सोनीतपुर असम से।
0: अमल बसुमतरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए, आपको आज कौन सा गीत सुनाऊं?
1: गाने के बोले से है, सजना तेरे प्यार में हम पर दिसी हो गया, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में।
0: जी,
1: क्या दिल ने कहा है फिल्म का नाम।
0: जी ठीक है, जरूर सुनवाएंगे। और बताइए, आपके साथ इस गीत को सुनने वाले और कोई दोस्त है?
1: जी, हमारे दोस्त है रमेश पत्र, रोनू पत्र, लकी पत्र, लवण्य पत्र, दीपांकर पत्र और भाईकोन मुंडा, विमल बसुमतारी, माइनूरा भा, कासिम अली और हमारे नीलोत्पल द्वारा, सौरभ द्वारा और पुतुल बरुआ, हमारे जोगेंद्र रंगी है और सभी आकाशवाणी सुनने वालों को, और देवाशीष हजारिका भी है और हितेंद्र दास भी है, साथ में सुन रहे हैं इस गाने को।
0: जी, और अमर बसुमतरी जी, अब असम के जो अन्य क्षेत्र है उनमें बहुत बार आई हुई है ना?
1: जी जी, आए थे जे शिवसागर में है, जोरहाट में, गोलाघाट और सोराइडियो जिले में हुए थे। बहुत नुकसान पहुंचे हैं,
0: देखकर हम सब भी बहुत दुखी है कि असम में बहुत लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा और बहुत से लोग बेघर हुए हैं।
1: जगह में कभी भी ऐसे बाढ़ नहीं हुई थी जो नागालैंड में, जो बादल फट गया इसलिए ऐसा कारण हो गया।
0: जी, हमारी प्रार्थना उन सभी के साथ है जिनको नुकसान पहुंचा है, वो जल्द से इस स्थिति से उभरे, हम यही प्रार्थना करते हैं। और आपके वहाँ पे तो मौसम ठीक है ना?
1: हमारे यहाँ तो फ्लड होने का ज्यादा चांस नहीं है, नदी वगैरह में सामने नहीं है।
0: जी,
1: और आज ज्यादा धूप भी नहीं निकली है, रात को थोड़ा सा बारिश हुआ था रिम जिम, और अभी बारिश भी खुली हुई है और धूप भी नहीं है। तो मैं बागान में है।
0: जी, आपका बागान का जो स्थिति वो कैसे है? चाय बागान है ना आपके?
1: हाँ, चाय का बागान है। जो बारिश नहीं होता है ना, जो पत ज्यादा से नहीं निकलता है, बहुत कम पत निकलता है इस सप्ताह में। पहले तो बहुत अच्छी तरह से हुए थे, इस सप्ताह में थोड़ा सा कम से पत निकला है।
0: लेकिन बारिश भी अगर ज्यादा हुआ तो फिर नुकसानदायक है, थोड़ा बहुत होना चाहिए। लेकिन आपके वहाँ पे जो फसल है उसकी
1: बारिश होना चाहिए तो
0: जी जी
1: के लिए। और पानी, हमारे यहाँ पानी सुखाने लगा है, धान पत्थरों में भी पानी ज्यादा नहीं है।
0: जी जी, प्रकृति का जो खेल है वो भी अजीब है ना अमल बसुमतरी जी। कई जगह पर जहाँ पर पानी की जरूरत है खेती को, लेकिन वहाँ पर बारिश की कमी है, और अन्य जगहों पर बाढ़ की स्थिति से सबकी हालत बहुत ही खराब है, देखकर बहुत दुख होता है। लेकिन अब क्या करें, प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है ना अमल बसुमतरी जी। जी जी, चलिए ठीक है। तो अमल बसुमतरी जी, मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्कार.
1: नमस्कार मैडम
0: जी. नमस्ते.
1: Let's go.
0: Gonna

0: हेलो नमस्कार।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: हेलो जी, नमस्ते
1: जी। बन्ना जी, आसाम जिला निशा प्रसिद्ध बिमल बसुमतारी बोल रहे मैम।
0: जी जी, बिमल बसुमतारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी मैम, ठीक ठाक है। बहुत दिन से आप फोन लगाए मैम। जी, अच्छा लग रहा है आप लगा के।
0: जी जी,
1: कैसे है मैम मौसम? ठीक है
0: जी, हमारे यहाँ पे तो मौसम फिलहाल दिन में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन शाम को तो रोज बारिश होती है।
1: हमको मैम हमारी फिल्म का जो भी गाना एक सुनाने से होगा मैम।
0: और बताइए, आपके साथ इस गीत को सुनने वाले और अपने दोस्तों के नाम?
1: दोस्तों के लिए विनती करना चाहते हैं।
0: जी जी बताइए।
1: हम लोगों है रमेश पत्र है अंजलि सुनता बसुमतारी
0: जी जी। विमल बसुमतारी जी, मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: यहाँ तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार की सुबह 10 बजे हमें इस मोबाइल नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 6033914908। इसी जानकारी के साथ ही अब आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह से फिर मुलाकात होगी इसी समय और इसी दिन। तब तक के लिए तकनीकी सहयोगी हेमंता स्वर्गरी, न्यूटन बोरा, आशुत बर्मन और शिखा देखा के साथ अपने दोस्त सिटी म्याजिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आप श्रोताओं द्वारा फोन पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ और इस कार्यक्रम को आज संचालित कर रही थी सिटी म्याजिन। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। लोकसभा ने आज सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित संसाधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। ये विधेयक सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने तथा दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों में शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने के अनिवार्य किया गया है, जो मामले की प्रतिदिन सुनवाई करेंगी। इसके अलावा अपराध से संबंधित जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी तथा आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना अनिवार्य होगा। राज्यसभा के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन करेगा। प्रस्तावित कानून के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस कानून के उल्लंघन पर 3 वर्ष के कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ईटानगर के व्यापारिक समुदाय और कंटेंट क्रिएटर्स के एक समूह ने असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। इनमें खाद्य सामग्री, पैकेज्ड पेयजल, कपड़े, जूते चप्पल तथा स्वच्छता संबंधी सामग्री शामिल है। इस सामग्री के ईटानगर दुकानदारों, व्यापारिक समुदाय और शुभचिंतकों द्वारा स्वेच्छा से दान किया गया है। नागरदीप विश्वास के नेतृत्व में 8 स्वयंसेवकों की एक टीम ने आज सुबह असम के शिवसागर के लिए रवाना हुई, जो वे अपर असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित करेंगे। कुरुंगुमी जिले के हुरी में स्टील पुल का सफलतापूर्वक शुभारंभ। 85 RCC BRTF अरुणा द्वारा BRTF हुरी के ऑफिसर कमांडिंग OC संदीप तिवारी के पर्यवेक्षण में तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय में किया गया है। पुल में संबंधित शेष कार्य अगले 3 से 4 दिनों में पूरे होने की उम्मीद है, जिसके बाद दामिन हुरी सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। चांगलांग जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जेम्स ऑफ इंडिया क्रिएटर्स पहल का जिला स्तरीय शुभारंभ एवं प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय चांगलांग में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के कंटेंट क्रिएटर्स और अन्य रचनात्मक प्रतिभाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान माई वेब्स प्लेटफॉर्म का लाइव प्रदर्शनी भी किया गया। आज गोल्डन जुबली बैंकेट हॉल ईटानगर में अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन AEDMA कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। तकनीकी सत्रों में डिजिटल मीडिया एंड सिटीजन्स एम्पावरमेंट, हु शेप्स द नैरेटिव इन द इंफॉर्मेशन एजेस तथा मीडिया फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग विदाउट फियर एंड फेवर जैसे विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों, ब्यूरोक्रेट्स तथा राजनेताओं ने पैनल के तौर पर भाग लिया। माय भारत कार्यक्रम में क्रियान्वयन की समीक्षा करने तथा युवा विकास पहलों के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से माय भारत जिला सलाहकार समिति की बैठक आज तिराप उपायुक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में उपायुक्त मदनलोम तौसिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य फोकस 1 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक चलाए जा रहे माय भारत पोर्टल पंजीकरण अभियान पर रहा, जो 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए संचालित किया जा रहा है। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ARSRLM की जिला संचालन समिति की बैठक आज तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बोमडिला के जिला मिशन प्रबंधक तोको लेच ने स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने, सतत आजीविका को बढ़ावा देने तथा वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और उद्यमिता सहायता के लिए लखपति दीदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। कोलोरियांग स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आज ह्यूमन पेपिलोमिया वायरस HPV टीकाकरण पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थी और विद्यालय कर्मियों को सर्वाइकल कैंसर तथा HPV से संबंधित अन्य बीमारियों की रोकथाम में HPV टीके के महत्व के बारे में जागरूक करना था। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 14 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, कुरुंगकुमे, पापुपारे, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, सुयोमी, लेपारादा, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने

0: Siang, Changlang, Thirap and Longding districts of Arunachal Pradesh. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से ईटानगर से अनुप्रसारित रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम कुआं में तराने। कार्यक्रम कुआं में तराने में आप आज सुन सकेंगे लता मंगेशकर की आवाज में एक देशभक्त गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में इसी देशभक्ति गीत के साथ कार्यक्रम को हमें तराने यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ब्लफ मास्टर से। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, वसंगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की हमें फरमाइश की है मजनू का टीला दिल्ली से। आप है कमाल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा, और सतना मध्य प्रदेश से आप है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म तीन देविया से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत है एसडी बर्मन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है नालेश्वर नगर नारविल महाराष्ट्र से, आप है पीएस नवकर, निर्मला नवकर और विशाल नवकर, और मलकापुर से आप है नारायण इंग्ले, सोपन तायदे और आशीष मुरेखर।

से अनुराधा पोटवाल और मनहर उदास की आवाज में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की व संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है गांधी चौक बारमेर राजस्थान से आप है बावलेश पनवर, दैनी पनवर और मनीष पनवर। रामदेवरा से आप है दिनेश चौहान और खालिफों की बावड़ी से आप है खुदाबख्श खलीफा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म जुमरू से किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की, वह संगीत है किशोर कुमार का। इस गीत की हमें फरमाइश की है कि चंगा बस्ती तवंग से आप है सिरिंग, और उन्होंने इस गीत को समर्पित किया है कैपिटल ईटानगर के श्री अमन बागंग जी को।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म हसीना मान जाएगी से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना है अख्तर रोमानी के व संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की हमें फरमाइश की है मेहर नगर उमरखेत महाराष्ट्र से आप अभिजीत गांवकर राही मिसेस सरिता गांवकर और प्रिंस एकांश गांवकर। बदलापुर मुंबई से आप है सिद्धांत गांवकर परिणीता गांवकर और लाडला टुक टुक गांवकर। और आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप है वैशाली शैलेश गांवकर सुमित गांवकर और मिस दवानी गांवकर।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस शुरू की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 9 बजे न्यूज़ @9।

0: और गुलवीर सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर बधाई दी।
1: वर्ल्ड जूनियर स्कॉश टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: हॉकी इंडिया ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह को टीम की कमान सौंपी।
1: और शुभमन गिल बने वनडे में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज। वैभव ने लगाई लंबी छलांग।
0: जी हाँ, आज की हेडलाइन ये थी अब तक की।

0: और श्रोताओं, खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में आज का दिन भारतीय मुक्केबाजों के नाम रहा, जिसमें मुक्केबाजी में भारत ने 5 पदक पक्के कर लिए हैं। पुरुष वर्ग में नरेंद्र बेरवाल ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन सिवाच ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि महिला वर्ग में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की की।
1: सिद्धार्थ उधर तजिंदर सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत अब 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर। सिद्धार्थ, लगातार भारतीय टीम हर दिन एक नया इतिहास रच रही है।
0: जी हाँ प्रशांत, और आज जिस तरह से हमारे मुक्केबाजों ने एक के बाद एक करके जो उन्होंने जीत का सिलसिला कायम किया, तो फिर वो रुका नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की, और पुरुष मुक्केबाजी की पहले अगर हम बात करें तो नरेंद्र बेरवाल की बात करनी होगी, जिन्होंने 90 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में समोआ के माइकल सेको को 3-2 से हराया। हालांकि शुरू में यह मुकाबला थोड़ा बराबरी पर रहा, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र ने अपना प्रदर्शन किया, उन्हें 3-2 से जीत मिली, वे टॉप 4 में पहुंचने वाले 9वें मुक्केबाज बन गए।
1: लेकिन सिद्धार्थ, अंकुश ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक तरफा मुकाबला खेला और 5-0 से अपने प्रतिद्वंदियों को जो शिकस्त दी है। उनसे पहले अंकुश ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में सेशल्स के जे मिकॉक को 5-0 से हराकर एक बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया। सिद्धार्थ,
0: जी हाँ, 5-0 जिसे हम कह सकते हैं कि, और हालांकि जो 5-0 का सिलसिला था वो प्रशांत रुका नहीं, और आगे का जो इसके बाद पहले जो मैच हुआ उसमें सचिन ने 70 किलोग्राम वर्ग में बोत्सवाना के ट्रेसर मोरेमी को 5-0 से एक बार फिर से हराया। और जो जीत के लम्हे होते हैं ना, उसके बाद सचिन ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं।
2: गोल्ड लेके जाना, गोल्ड की उम्मीद थी और मेरे मेडल मेरे कोच और मेरे घर वालों को दूंगा। स्टार्टिंग में बाउट से पहले थोड़ी घबराहट थी, लेकिन बाउट में जाते ही सारा डर वही ऑटोमेटिक चला गया और इजी बाउट थी, और आगे भी यही अच्छा अड़के में नहीं लेना है और गोल्ड लेके जाना है।
0: जी हाँ, तो ये थे हमारे पुरुष वर्ग के खिलाड़ी जिन्होंने आज 3 पदक पक्के किए, देश के नाम किए। और प्रशांत, महिला बॉक्सिंग में की बात करें तो क्या कुछ बता रहे हैं आप।
1: अरुंधति और साक्षी चौधरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सिद्धार्थ, अगर हम महिला बॉक्सिंग की बात करें तो अरुंधति ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में न्यूजीलैंड की मॉर्गन एडरसन को 3-1 से हराया। सुनते हैं क्या कह रही है अरुंधति।
3: डेडिकेट तो मैं मेरे छोटे भाई को करना चाहूंगी, और हाँ, हार्ड था क्योंकि जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा ओपोनेंट था, बट काफी मजा आया और जरूर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे।
0: जी हाँ, अपने भाई को अपनी जीत को डेडिकेट किया है, और अब सबकी नजर अपने आगे के प्रदर्शन पर है कि सेमीफाइनल में क्या कुछ होता है। लेकिन इसके साथ ही 51 किलोग्राम भार वर्ग की अगर हम बात करें तो साक्षी चौधरी ने नॉर्थन आयरलैंड्स की कैथलीन फ्रेयर को 5-0 से हराकर अपना दमखम दिखाया। आइए जानते हैं साक्षी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा।
3: ये जो जीत थी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसके बाद मेरा मेडल कंफर्म हो गया है और ये मेरा फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स था, कि मैंने जो मेहनत की थी, जो सबका सपोर्ट था, उसकी वजह से आज मैं मेडल कंफर्म कर पाई हूँ। और अभी मेरी आगे यही कोशिश रहेगी कि मैं और अच्छा करती जाऊँ और मेडल का कलर गोल्ड में बदलूँ। मैं पूरे इंडिया को ये अपना जो जीत है इसको डेडिकेट करना चाहूँ, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया है।
0: जी हाँ, अपनी जीत भारत को डेडिकेट कर रही है साक्षी, और क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आज
1: बॉक्सरों का जो प्रदर्शन रहा है,
0: हम लोग पूरे मैच पर नजर बनाए हुए थे।

0: इस शो के लिए और एक के बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारे बॉक्सर्स पदक पक्का करने लगते हैं तो हमारे अंदर भी जोश आ जाता है,
1: बिल्कुल
0: और वो फिर कहीं ना कहीं जो मोमेंट्स हैं वो कभी ना भूलने वाले मोमेंट्स होते हैं। और पूरे सफर पे अगर हम एक नजर डालें तो इससे पहले लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम, प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम, प्रिया ने 60 किलोग्राम और जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर ही चुके हैं। तो एक शानदार सफर, क्योंकि भारतीय मुक्केबाजों से काफी उम्मीद रहती है
1: बिल्कुल
0: लोगों
1: बिल्कुल
0: की।
1: और उसी उम्मीद पर कायम खड़े उतरे हैं सिद्धार्थ। अगर हम देखें तो पूरे अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात की जाए तो बॉक्सिंग में भारत ने 9 पदक पक्के कर लिए हैं, और आज के दिन की बात की जाए तो 5 पदक खिलाड़ियों ने जो है देश को समर्पित किया है और बेहतरीन प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं और भी इवेंट्स में, और बॉक्सिंग में आज उसी का एक प्रमाण देखने को मिला हमें।
0: बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जो मुक्केबाज हैं वो किस तरीके के पंचेस लगाते हैं और अपने अपोनेंट को धाराशाही करके अपने पदक का, जो यहां पर पदक तो पक्का किया ही है लेकिन हम सभी को उम्मीद है कि जीत का ये जो परचम है वो देश के लिए ये सभी खिलाड़ी लहराते रहेंगे। और इसके साथ बॉक्सिंग से थोड़ा बाहर निकलते हैं, बात करते हैं शॉटपुट की। प्रशांत, शॉटपुट से क्या खबर है?
1: शॉटपुट में सिद्धार्थ अगर हम बात करें तो तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल इवेंट जो है वो बृहस्पतिवार को खेला जाएगा और आज सबकी निगाहें इन पर थी और उसी तरह का प्रदर्शन भी कर दिखाया उन्होंने।
0: जी, और क्वालिफिकेशन में तूर को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क यानी 20 मीटर की दूरी पार करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तूर ने अपने पहले प्रयास में 19.93 मीटर की दूरी तय की, जबकि दूसरे प्रयास में उन्होंने 20.14 मीटर का थ्रो फेंका और फाइनल में जगह पक्की कर ली।
1: वहीं समरदीप सिंह गिल का दिन आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर रहा। उन्होंने 19.95 मीटर का थ्रो करके उन्होंने अपना पहले ही प्रयास में ये जो है अटेम्प्ट जो है सफल बनाया। उनका दूसरा थ्रो 19.75 मीटर का था जबकि तीसरा थ्रो फाउल हो गया, लेकिन उनका भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा।
0: जी हाँ, पहले ही थ्रो में देखिए तो 99.95 मीटर पे पहुंचा। और दोनों ग्रुप में कुल 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से गिल कुल 5वें स्थान पर रहे। ग्रुप ए में 7 और ग्रुप बी में 8 खिलाड़ी शामिल थे। तो नियम के अनुसार जो खिलाड़ी 20 मीटर का मार्क पार करते हैं या टॉप 12 में रहते हैं वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरजिंदर कौर और गुलवीर सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर बधाई दी है। इन दोनों ने खिलाड़ियों ने भारत के लिए रजत पदक जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उन्हें पुरुषों की इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण तारीफ के काबिल है। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।
1: उधर महिलाओं की 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में सफलता के लिए हरजिंदर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेलों में हमारे वेटलिफ्टर्स का इतना अच्छा प्रदर्शन देखना खुशी की बात है। हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता।
0: जी हाँ, हरजिंदर ने स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम वजन उठाया। इस पोडियम फिनिश में ग्लासगो में भारत के शानदार वेट लिफ्टिंग अभियान को और ज्यादा मजबूत किया। पदक जीतने के बाद अपने जो हरजिंदर ने अपने अनुभव को कुछ इस तरीके से साझा किया।
2: मैं बहुत खुश हूँ सिल्वर मेडल जीत के और अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश हूँ। ट्रेनिंग में मैंने इससे अच्छा क्लीन जर्क कर रखा है, पर फिर भी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी 6 की 6 लिफ्ट पास। मैं सोच के आई थी इस बार के एक तो मैंने अपने मेडल का कलर चेंज करना है और दूसरा मुझे अपनी लिफ्टिंग अच्छी करके आनी है। मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे और इंडियन फेडरेशन गवर्नमेंट सबका बहुत सपोर्ट है, उनकी वजह से आज हम यहाँ तक है।
1: उधर गुलवीर ने भी इस प्रतियोगिता में यादगार प्रदर्शन किया और देश के नाम रजत पदक जीता। जीत के बाद उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया।
3: अच्छा हुआ क्योंकि हमारे देश के लिए मेडल आया है, क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोच को खुशी है और जितने भी हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो ये है, बाहर के जितने एथलीट हैं उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, हम इनके साथ कैसे दौड़ेंगे, क्या हम क्या हुआ। बड़े प्लेयर के साथ खेलते हैं तो हमारे अंदर की जो फीलिंग है ना वो निकल जाती है, क्योंकि हम ये लगता है हम मेडल जीते किस हिसाब से वो कंपटीशन कर रहे हैं हमारे से।
0: जी हाँ, जिस तरीके

0: का प्रदर्शन गुलवीर ने किया, पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया और वे इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। और बुक्केबाजी की हम बात कर रहे थे, वही बुक्केबाज जादूमणि ने 55 किलोग्राम वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जाम्बिया के मेंगो वाले को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराया। उन्होंने एक के बाद एक पंच लगाए और विपक्षी बुक्केबाज को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। और जीत के बाद उन्होंने अपना अनुभव कुछ इस तरीके से साझा किया।
1: काफी अच्छा लग रहा है मुझे, पहले का गेम से मेरा मेडल आगे, तो मैं इससे और अच्छा करूंगा कि आने वाला अन्य सेमीफाइनल में इसे बेटर कर सकूं मैं और इंडिया के लिए गोल लेके जाऊंगा।
2: वहीं भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
3: 23वें लास्ट मंडल खेलों में सुश्री हरजिंदर कौर तथा श्री गुलवीर सिंह रजत पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं।
0: ऑन्टारियो में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में कुवैत को 2-1 से हराया, जबकि महिला टीम ने ग्रुप चरण के अपने आखिरी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराकर दमदार जीत दर्ज की है। सुनते हैं वैष्णव की ये रिपोर्ट।
4: 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम को कुवैत के खिलाफ जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। पहले मैच में युशा नफीस को कुवैत के अब्दुल्ला अली के खिलाफ सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की। दूसरे मुकाबले में आर्यवीर दीवान ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए खालिद वली अल्फोजेन को 11-5, 11-6 और 11-5 से हराकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद निर्णायक मैच में गुरवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब्दुल रहमान अल सानिया को 11-3, 11-3 और 11-4 से हराकर भारत को 2-1 की जीत लाई। अब भारत
2: उधर भारतीय महिला हॉकी टीम बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले हॉकी विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर आज यूरोप के लिए रवाना हो गई। ये विश्व कप 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा। भारत अपना पहला मुकाबला सिद्धार्थ 16 अगस्त को चीन के खिलाफ खेलेगा। विश्व कप से पहले भारतीय टीम 31 जुलाई और 1 अगस्त को मेजबान टीम जर्मनी के खिलाफ लगातार 2 फ्रेंडली मैच खेलेगी। और उधर सिद्धार्थ, हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है।
0: जी हाँ, और हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। यह प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आइची नागोया में खेली जाएगी। उधर ग्वालियर में हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस एकेडमी चैंपियनशिप और हॉकी इंडिया जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप के दौरान सब जूनियर प्रतियोगिता में खालसा स्पोर्ट्स हॉकी एकेडमी कोलकाता और राजाकर हॉकी एकेडमी ने जीत हासिल की है, जबकि जूनियर प्रतियोगिता में भाई बहलो हॉकी एकेडमी और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी विजय रहे।
2: और अब बात क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। आईसीसी ने आज बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज बन गए। वहीं वैभव सूर्यवंशी को भी T20 रैंकिंग में जबरदस्त फायदा पहुंचा है। वैभव 536 रेटिंग पॉइंट के साथ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 48वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं।
0: और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आपसे कुछ और बातें करें या किसी और खेल खबरों पर चर्चा करें। इसी के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ और प्रशांत को। नमस्कार।

पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध

0: घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हैं और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक के कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप

0: उन्होंने माननीय गृह मंत्री को लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
2: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
3: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
4: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने

0: आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh.